वाहे गुरु वाहे गुरु जी बोलो वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी बोलो सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम जी।

वाच वञ्चिताभ्याम् विधिला सर्वमापोमयम् जगत् विलोक्यताभ्याम् भवितो भगवान् कमलेक्षणा आवाम् दैन्यत्रोर्वी सलिलेन परिप्लुता विश्ववाच तथेत्युक्त्वा भगवता शङ्खचक्रकलाभृता कृत्वा चक्रेण वैच्छिन्ने जघने शिरसीतयोः एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्कृता स्वयम् प्रभावनस्या देव्यासु भूयश्रृणुवदान्ते जगदम्बार्पणमस्तु अस्य श्रीमध्यमचरित्रस्य विष्णुर्षि महालक्ष्मीदेवता।

सर्वाश्रया किमिदम् जगदंशभूतो मव्याकृताय परमा प्रकृति त्वमाद्या यस्या समस्तसुरता समुदीरणेन तृप्तिम् प्रयाति सकलेषु मखे।